0: चालीस वर्ष पुगेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौ।
1: चिसो पदार्थ मात्र मासु कम खाऊ। खानामा साग पात र फल फुल खाऊ।
0: मद्यपान र धूमपान सेवन नगरौ।
1: स्वस्थ रहौ। सुखमय जीवन बिताऊ।

0: तिम्रो प्रश्न तिम्रा भावना अनि तिम्रो अनुभव अब मनमा राख।
1: माया मित्रता शरीर सम्बन्ध सुरक्षा आफ्नो निर्णयका कुरा बुझौ सोधौ अनि खुलेर कुरा गरौँ।

0: सदाई कलर स्वस्थ संतान हो अवस्था हो जिसका खाना खत खाना का संतान नियमित रूप में आयरन कैल्सियम खाया नहीं सुखाई स्वस्थताई सुरक्षित परिवार
1: रेडियो परिवार एफएम द्वारा सुरक्षित नजारी संदेश
0: अब आप शरीर

0: चिंता सपना आता मुक्त राहता मुठ रोगात पोहोचू शकेल सर.
1: चाळीस वर्षापटेपासून नियमित स्वस्थ जांच करो.
0: चिल्ल पदार्थ माछा मासु कम खाओ. खाना साटा तर फल फूल खाओ.
1: मद्यपान तर धूम्रपान सेवन न करो.
0: स्वस्थ रहो सुखमय जीवन जीवन.
2: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश.
3: Thank you.

आधिकारिक वेबसाइट www.ishnet.org.nz सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण

नमस्कार। मेरा नाम रघुनाथ चौधरी, बांसगढ़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 4 और 7 जिला। मैं जनक उद्यम वातावरण हम लोग पर्वती जड़ी बुटी उद्यम वाता

बच्चों के लग गए, सिद्धार्थ की करियर था, अब सब कुछ लग गया था। वो ध्यान करने पर उसके भाव से सुधरने की गौरव भी थे। ठीक बात दीदी, हमने यह

0: aventurada, s'han llegit les ara i s'han vist.
1: Hola, som de vos, com has marxat?
2: I sus hostes han de trencar de palma, dispoti sa de boios que tornes amb què, ut sorak tota la cotxo quimnosan. Posso dit tota pellari cana, zonfur, tota tipaca canada, surien dire, bleuta, mutimo cotxo quim, mana universo. I sus hostes han de trencar de palma, dispoti sa de boios que tornes amb què, ut sorak tota la cotxo quimnosan. Posso dit tota pellari cana, उपयुक्त होने सलाह दिए तो सा
1: नियम तो पाए तो शारीरिक व्यायाम ने मुझे स्वस्थ बनाना मदद कर सा
2: संतुलित भोजन पर्याप्त निद्रा सकारात्मक सोच एवं चिंता सपना पर मुक्त रहना मुझे रोग लाए तो पहुंचना सकें सा
1: 40 वर्ष कटे पति नियमित स्वास्थ्य जांच कराओ
2: चीनी पदार्थ मात्रा मासु कम खाओ खाने में सात्ता और फल फूल खाओ
1: मध्यपान या धूम्रपान सेवन न करो
2: सुस्त रहो, सुखमय जीवन
0: रहो। वीडियो को बाबा एक्शन द्वारा जो ही पुजारी संदेश

Again, sometimes talking about that perhaps I'm going to be an underbird or animal. आपका पैसा सिर्फ डंपुर बिहार के गांवों से 50,000 रुपये शादी करानुमा रंगा हूँ अगर पट का कमरा बाजार जमैया टोल वो वन गौरी टोल में से 95,000 रुपये राहत संकलन मिलता उसने कर रामदान की सामुदायिक प्रधान से 50,500 रुपये वो शादी करानुमा साथ नगर का प्लस होना में से 63,000 नगद रुपया संकलन मिलता उसे कर संकलन मिलता के हाथ रकम उड़ा करेगी महस्ता तक तक बांसकरी नगर पालिका ने कमरा सचिव गुरु प्रसाद गौतम चांद का निर्माण और कंसर राहत संकलन अभियान आगे जारी होगा। ये बीच बांसकरी नगर पालिका 6 सदस्य गांवों के फसलों को यहाँ प्रभावित कर 16,695 रुपये नगर उस चार क्विंटल चार राहत स्वरूप संकलन देकर उड़ा कायदे में हस्तांतरित करेगा। सदस्य वर्ग संस्था का सचिव हरि प्रसाद चौधरी के अनुसार स्थानीय भाषी स्फूर्त रूप में स्वाभाविक पिता मूल राहत संकल्प कैद्य को यहाँ प्रभावित परिवार को सभी कई स्थानीय स्तर में नागरिक समुदाय संस्था तथा वैज्ञानिक समूह

0: निष्पक्ष छानबिन भएका कि पुठामा टिप्नु वैशाख नगते राजीनामा टिप्नु र प्रकर्ता संघ सरकार र पूर्व न्यायाधीश अजित प्रसाद भण्डारीका नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समितिले गठन गरेको छ।
1: राष्ट्रीय समाचार सुन्दा हमारा सन्देश प्रसंगी बधाई लगे हमारा सन्देश महीना से पहला मुख्यमंत्री सन्देश के द्वारा रसुआ फोटे कोशी लतिया महिला उन्नीस तारीख को एक प्रेत कलाइन पास हुई नगर पालिका वार्ड नंबर 5 में अवस्था 1,34,000 नगर तथा जिला संतुलन मिलता नेपाली कांग्रेस का सांसद नरेन्द्र कुमार तेरों के हमला के सुधन प्रमुख पद देखे छानबीन समिति आयोग प्रतिवेदन साधने का सरकार से मार्ग बांटा।

बेटियों भारी प्रभावित क्षेत्र में राजस्थान का लालपुरा राजधानी का तारगा पड़ा है।

मंदिर जी व्यक्ति रखे रहते हैं जिन्हें कैसे रहेगा हर दूसरे सबको मिलाकर मेरी जनती देना ऐसा करना तेरी गलत जनती देने लुगा लुगा कर

0: seluruh pelaksana acara.
1: Di sesuatu sambutan kesan itu amat istimewa dan boleh sekadar mungkin untuk tetap untuk kemasan. Prosedur tetap dihari karena junk food tetap dibaca karena sodium di dalamnya sudah mudah untuk kemarahan kita. Di sesuatu sambutan ini juga begitu dari 5 gram semua nun semangkuk upaya kami salah dia tu sah.
0: Nilai terukah hidup dalam sahijik daya ini mudah susah mengalami mudah kosong.
1: संतुलित भोजन पर्याप्त निंद्रा सकारात्मक सोच एवं चिंता तनावबाट मुक्त रहँदा मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ
0: 40 वर्ष पुगेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौँ
1: चिसो पदार्थ माछा मासु कम खाऊ खानामा सक्ता र फलफुल खाऊ
0: मद्यपान र धूम्रपान सेवन नगरौँ
1: स्वस्थ रहौँ सुखमय जीवन
2: बिताउँ
3: खुलेर